0: services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscoatgrouppractice.co.uk.
1: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship, and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
2: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.
4: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर FM
5: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe ji aap bol ke lab azad hain tere.
6: Ji.
4: कोई क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग में अभी आया हो?
6: सर मैं अभी अभी जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो उसमें आपको लगता है से डिपेंड्स ऑन द पर्सन एज वेल कि वो इन सब चीजों में से क्या चीज एक्सट्रैक्ट करता है हाँ और उसको कैसे समझता है
4: जी बिल्कुल इंसान का जो मटेरियल होता है इंसान जिस मट्टी से बना है उससे असर पड़ता है आपके जो जेनेटिक्स होते हैं उससे असर पड़ता है आप कितना सोच और समझ रखने वाले हैं क्योंकि हर आदमी अपनी समझ के मुताबिक ही समझता है कई लोगों के लिए आप दुनिया ज़मीन आसमान भी एक कर दें उन्हें कुछ पता नहीं चलता उनको अगर आप $100 दें रोज़ के और उसके बाद आप दो भी कर दें तो उन्हें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इन तमाम चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है तो इससे ये होता है कि आपकी मट्टी के लोग आपके साथ हो जाते हैं और जो आपके लिए नहीं होते वो अलहदा हो जाते हैं इसी को फिलासफ़ी की ज़बान में मैं सिंपल करने के लिए ताकि लोगों को याद रहे उसे कहता हूँ आप एक्सपीरियंस देंगे और उस एक्सपीरियंस के बाद घोड़े और गधे अलहदा हो जाएंगे तो इस तरह हर बंदा डिफरेंट है फिर आपने ये देखना है कि ये आपके लिए है या नहीं वो आपके लिए नहीं है का मतलब ये नहीं है कि वो बुरा है बस वो आपके लिए नहीं अच्छा ठीक है क्योंकि लोग ये हमेशा ज़िंदगी में एक बात याद रखिएगा लोग जनरली हमेशा गुमान को अच्छा करें गुमान अच्छा क्या कहता है कि लोग हमेशा अच्छे होते बस कभी कभी आपके लिए अच्छे नहीं होते तो उनको जब आप उनसे अलहदा होते हैं तो उनको उन जैसे मिल जाते हैं आपको आप जैसे मिल जाते हैं टाइम एनर्जी इमोशन ये सारी चीज़ें बच जाती हैं और आप उसमें बेहतर अब काम कर सकते हैं कोई या बेहतर चीज़ ढूंढ सकते हैं अपने लिए आपका वक्त ज़ाया नहीं होता और दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपका वक्त और आपकी एनर्जी है क्योंकि वो वापस नहीं आ सकती ठीक है नाइस ऑफ यू मैम थैंक यू वेरी मच रेडियो आज़ाद यू ऑन द एयर वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम होल्ड रखिएगा मेरे साथ ठीक है मेहरबान जी हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी बड़े सयाने उन्होंने सही जगह पे कॉल कर लिया और आज वो गौर से सुन रहे थे आज पहली दफा ऐसा हुआ कि जैसा मैंने कहा दोबारा नहीं एक्सप्लेन करना पड़ा जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम
7: बारिश फरमाया
4: हाँ जी बिल्कुल आपके बारे
7: शुक्र है अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
4: अच्छा मजे की बात यह है ये जो मैं क्लिप्स बनाता हूँ और मैं भेज देता हूँ मैंने तो ये क्लिप हो सकता है महीना दो महीने पहले रिकॉर्ड किया हो हर आदमी जिसके अंदर कोई ना कोई काणापन होता है ना या जिस बंदे को लगता है मुझे कह रहे हैं वो मुझे मैसेज लिख के भेज देता है कि सर ये आपने मुझे कहा है, भाई ये आपने मुझे कहा है, ये आपने मुझे कहा है। कई लोग जिनके अंदर, तो मैं उन्हें कहता हूँ मैंने तो ऑफकोर्स आपको नहीं कहा, मैंने पता नहीं ये कब कहा था, क्या क्वेश्चन हुआ होगा, क्या बात हुई होगी, तो ये बात मैंने कही होगी, लेकिन अगर आपको ये लगी है तो इसका मतलब है ये आप हैं। और अगर देखें,
7: मुझे लगती हाँ। नहीं उसे मैं आगे से फॉरवर्ड भी करती हूँ, जहाँ जहाँ वो जाती है वहां से आपके लिए और दुआएं आती हैं। अच्छा, मैं ज्यादा टाइम आपको
4: दुआएं भी आती होंगी कि भाई ये हर बात जो हमारे अंदर है ये हमें खोल नहीं, के नहीं। बता देता है सामने, क्या फायदा जी।
7: नहीं वो दुआएं आती हैं, मैं आपको ज्यादा होल्ड नहीं करवाऊंगी, मैं दोबारा कॉल कर लूंगी क्योंकि मुझे वो दूसरी बातें भी सुननी है। आपको मुबारकबाद देनी थी क्योंकि आपकी जो आई थिंक इस वक्त होल्ड पे हैं साथ में, हमें आपकी और उनकी कन्वर्सेशन ज्यादा पसंद है।
4: अच्छा, इसका मतलब है आपने अच्छा उनको बता दिया, वरना हर बंदा कुछ नहीं है तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन तो इतना अच्छा नहीं होता। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच, आपके कंग्रेचुलेशन पहुंच गई और उन तक भी आवाज पहुंच गई। जी सजीरा जी, वालेकुम अस्सलाम। आज तो आपने हैंड्स ऑन सुन लिया, लोग आपकी और हमारी कॉन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं एज अ को होस्ट।
8: हजार कुर्बान शमजादला, इतने प्यारे प्यारे आपके आपकी ऑडियंस इतनी प्यारी है, माशाल्लाह से अल्लाह इनको इनकी जिंदगियों को अल्लाह पाक नूर से भरते।
4: बिल्कुल जरूर। और देखें जहरा जी, पहले ममता जी होती थी, फिर जहरा, वो लंबी अरसे तक ड्यूटी करती रहीं फर्स्ट कॉलर की, फिर जहरा जी अवेलेबल थीं वो करती रहीं, फिर वो मसरूफ़ हो गई, ममता जी आईं वो अवेलेबल थी मसरूफ़ हो गई, फिर उसके बाद आजकल अफशान जी ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है को होस्टिंग की, शुरू में शो को शुरू करने की। लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं आपको कैसे पता होता है लोग आएंगे, अगर किसी दिन लोग ना आए तो मैंने एक बात ये कि मैं कैसे मान जाऊँ कि कोई नहीं आएगा। एक बात, जब हमेशा आते हैं रब की मेहरबानी होती है, जिस दिन कोई नहीं आएगा उस दिन कोई मकसद मसलियत होगी और उस दिन हम अपनी बात कर लेंगे और घंटों कर लेंगे, कोई बात नहीं है। तो लोग आएंगे, उनके दिल में जैसे जैसे जिसका जो जब दिल चाहेगा वो जब आएगा। ज़ोर ज़बरदस्ती का काम नहीं है ये, ज़ोर ज़बरदस्ती तो हम टीम वालों के साथ कर रहे हैं तो वो नहीं पूरे करते, अभी तक हम उस जगह पर ही नहीं पहुँचे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फील करके खुद चीज़ें कर सकें, और कमिटमेंट्स और चीज़ें भी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हुक्म
8: बस अजाज़ल्ला, आपको रेडियो आज़ाद की सालगिरह बहुत बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरे तो इंशाल्लाह आपके साथ अभी ये पांचवा साल है, मैं तो इतनी अभी अभी ज्वाइन की है, लेकिन इन पांच सालों में तकरीबन बहुत ज़्यादा चेंज मेरी ज़िंदगी में आया, और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर अस।
4: कोशिश, मेरा काम है कोशिश करना, आयशा जी का काम है इस प्लेटफॉर्म को चलाते रहना, हमारी टीम का काम है उसको सपोर्ट करते रहना, लिसनर्स का काम है अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहना और गाहे गाहे एक्नॉलेजमेंट करते रहना, स्पॉन्सर्स का, प्रोड्यूसर्स का और एडवर्टाइजर्स का काम है अपना अपना हिस्सा डालते रहना। हम सब ने जो जो डाला है उसकी वजह से रेडियो आज़ाद यहाँ पहुँचा, हम में से बहुत सारे लोगों ने और डालने की कैपेसिटी है हम सब में, मुझ में, बाकी लोगों में, वो और डालेंगे और बाकी लोग उसका और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हर साल कम अज़ कम कोई भी चीज़ 10-15% हर साल उसके अंदर इंक्रीज़ होना चाहिए। जैसे आपने उसमें देखा, ये जो फ़ंड रेजर हम करते हैं, 3 साल पहले $1,02,000 थे, फिर उसके बाद अगले साल हमने $1,25,000 रेज़ किए, इस साल $1,50,000 आपको बताए लेकिन बिहाइंड द सीन उससे भी ज़्यादा हुए। तो इस तरह जैसे प्रोग्रेस होती रहेगी, नथिंग मोटिवेट्स यू मोर देन रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स जब आते रहेंगे और जब हम स्टैग्नेट, दो चीज़ों से पता चलता है कि ये काम कैसे चलेगा, एक रिजल्ट्स आ रहे हैं और दूसरा आप एग्जॉस्ट नहीं हो रहे, स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा। अगर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है और रिजल्ट आ रहे हैं तो उसका मतलब है रिजल्ट्स आ रहे हैं लेकिन सिस्टम और हम और ज़्यादा उसको बेहतर करें और उसको मजबूत करें ताकि विदाउट स्ट्रेस ये सारे सिस्टम आएँ। क्योंकि खुदा का कानून, और ये कहाँ से सीखा हमने, रब से सीखा, यूनिवर्स हज़ारों सालों से, लाखों सालों से चल रही है, अरबों सालों की इसकी एज हो चुकी, आगे भी अरबों सालों तक तैयार है, जब तक हम कोई गड़बड़ नहीं करेंगे और हम इसको ख़त्म ना कर दें दुनिया को अपनी हरकतों से, तब तक जो है वो काम बड़ा लंबा है और वो बग़ैर थके चल रही है। इस आदमी रब से, मैं आपको हर वक्त रब के बारे में रेफ़र करता रहता हूँ क्योंकि और कोई एंटिटी नहीं जो आपको इतना कुछ सिखा सके, सब जो सिखाएंगे वो भी रब से ही लेके सिखा रहे हैं, तो क्यों ना डायरेक्ट सोर्स पे हाथ डाल दें हम। तो यूनिवर्स चल रही है, थक नहीं रही, जो थक रहा है इसका मतलब है वो कुछ गलत कर रहा है, इसका मतलब है सिस्टम नहीं बन रहा, इसका मतलब है हम अपने काम को समझ नहीं पा रहे और अभी इसमें इम्प्रूवमेंट की का रूम नहीं, पूरा हॉल है। तो और मैं हमेशा चीज़ों में अपनी गलतियाँ पहले निकालता हूँ, दूसरों के बाद में निकालता हूँ, और मैं जब अपनी ठीक कर लेता हूँ तो फिर मैं दूसरों की तरफ आता हूँ कि अब ये मेरी गलती थी, अब बाकियों की क्या क्या غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کریں گے اور ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں گے اور پھر آپ میریکلز دیکھ لیں. ہر چیز کا مجھے لوگ کہتے تھے اور بڑے قریبی لوگ کہتے تھے کہ جی ایف ایم نہیں ہوگا, ایچ ڈی تھری نہیں ہوگا تو ریڈیو نہیں چلے گا. وہ چل رہا ہے دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے. پھر انہوں نے کہا جی اے ایم نہیں ہوگا تو نہیں چلے گا, وہ بھی بڑا زبردست چل رہا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی فلاں نہیں ہوگا تو بڑا زبردست چل رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ رب جب بیماری دے گا تو ساتھ اس کا علاج بھی دے گا. آپ نے صرف ایمان پکا رکھنا ہے, اپنے کام کو پکڑ کے رکھنا ہے, اپنے فیتھ کے اوپر آپ نے کام کرتے رہنا ہے. ارد گرد فیتھ اگر کم ہے تو ان میں فیتھ گھسیڑتے رہنا ہے آپ نے, تاکہ ان کا فیتھ بھی اگر کمزور ہے تو وہ نہیں چلے گا کام. کیونکہ اس کے لیے تمام لوگ اپنے اپنے ساتھ ایک ہی, جب تک تمام لوگوں کی سیم برین کی سنکرونائزیشن نہیں ہوگی تب تک رزلٹس نہیں آ پائیں گے. ہر وہ چیز, میں جس گھر میں ہوں, میں جس رشتے میں ہوں, میں جس فیملیز میں ہوں, میں جن فیملیز میں ہوں, میں جن بزنسز میں ہوں, میں جن آؤٹ فٹس کا ساتھ ہوں, ان میں جو چیز یہ میں کر پا رہا ہوں, جتنا میں رب کا قانون اس میں انکارپوریٹ کر پاتا ہوں, اور وہ لوگ ڈھیلا چھوڑتے ہیں خود کو سسٹم کو, کیونکہ سٹیٹس کو چینج کرنے کے لیے بہت کچھ ڈھیلا چھوڑنا پڑتا ہے. جیسے جیسے وہ لوگ ڈھیلے چھوڑتے جاتے ہیں ان کے رزلٹس بڑھتے چلے جاتے ہیں. جس کا فیتھ ویک ہے اس کے فیتھ پہ کام ہوتا رہے گا اور وہ رزلٹس دیں گے. میں نہیں روز دکھا سکتا, میں آج ہوں کل نہیں ہوں گا. تو اس طرح ساتھ ساتھ میں کام کرتا رہتا ہوں, چیزوں کے رزلٹ ساتھ ساتھ آتے رہتے. آپ نے ہولڈ کرنا ہے, میرے ساتھ رہنا ہے. مہربان ہے ہمارے ساتھ. ویڈیو آزادی رون دے.
9: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام. مسکراتا ہوا چہرہ, کیسے ہیں آپ؟ Nice of you, ma'am. Thank you very much. یہ بتائیے آپ اینیورسری کا انتظار کر رہی تھی کہ اینیورسری پہ کال کریں گی؟
9: نہیں نہیں, میں نے آپ کو ایک بار اور کال کیا تھا.
4: ایک بار آپ کو یاد ہے, 14 سال سے ہمارا کام آپ کو یاد نہیں ہے.
9: Then and right now also I'm driving actually.
4: And you were driving then also by the way.
9: I'm sorry?
4: You were driving then also when you called the last time.
9: I stopped driving and then called you.
4: Yes, وہ کیونکہ آپ کہہ رہی تھی نا میں گاڑی میں ہوں. جی جی, یاد ہے ہم کو.
9: So anyway, your program is so amazing and I was listening, you were talking to some of the caller that initially when I started listening to your program, I couldn't believe that it's coming from a person who is from Midwest.
4: ہاں جی, یہی تو. یہ کیوں کیوں لیکن,
9: I'm sorry,
4: کیوں, why did you not believe that and why was it so
9: because
4: funny?
9: I don't know, you know, I mean I'm from there too, but I don't know, people are so complicated, mm-hmm. and they make everything so complicated, mm-hmm. and they don't think straight as you think, and so I couldn't believe it honestly that really he's from there.
4: تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ زیادہ تر تھاٹس جو آپ سیدھا سوچا کرتی تھیں, دوز ور دا رائٹ تھاٹس اینڈ ایوری تھنگ ایلس واز رانگ اینڈ اٹ ڈڈ ناٹ گیو یو ریزلٹس. ایسا ہی تھا؟
9: یس, اینڈ آئی ریئلی لائک اٹ واز لائک آئی تھاٹ یو ار جسٹ یور ایکسیپشنل ون اینڈ اونلی ون آف ا کائنڈ ان دیٹ کنٹری.
4: نہیں, ون آف اے کائنڈ میں ایکچولی تھا, بٹ اس لیے تھا کہ میں وہ ایک ہی گولی مجھے دے رہے ہیں اور میرے سر کا درد نہیں جا رہا, تو میں ون آف اے کائنڈ صرف اس وجہ سے ہوا کہ بھائی میرے سر کا درد نہیں جا رہا اینڈ آئی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ. سو آئی اسٹارٹڈ ٹرائنگ ڈفرنٹ میڈیسنز اینڈ ون ورکڈ. سو واٹ وہ مجھے پتا چلا دیٹ آئی نیو اباؤٹ دس میڈیسن آل الانگ اینڈ دس میڈیسن ہیز بین دیئر فار سینچریز اینڈ نو بڈی واز یوزنگ اٹ ایگزیکٹلی ود ڈفرنٹ بیکاز دے ہیو ڈفرنٹ ایکسکیوزز, دے ہیو ڈفرنٹ پیپل ٹو بلیم آن اور ڈفرنٹ انوائرمنٹس ٹو بلیم اوور اور آن اور اپون. تو یہ اسی وجہ سے تو وہ جب میں نے اس کو بلیو کیا, میں جب کھڑا ہوا, کھڑا ہونا تھا صرف. جب تک آپ کھڑے ہو کر چلتے نہیں ہیں, میں نے اس دن ڈیسائڈ کیا کہ میں اس چیز کے ساتھ رہوں گا. یہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیز میرے ساتھ چل پڑے, جیسے ہم چاہتے ہیں رب ہمارے ساتھ چلے. جی نہیں, رب وہیں پہ ہے, وہ کانسٹنٹ ہے, اینٹیٹی ہے, وہ پرماننٹ تھا, ہے, رہے گی. آپ نے اس کے ساتھ جا کر الائن کرنا ہے, یہ آپ کی ولنگنیس ہے اور آپ کے ایکشنز ہیں. تو رب تو میرے ساتھ تھا, میں اس کے ساتھ نہیں تھا, سسٹم کے ساتھ. تو بالکل اسی طرح میں اسٹریٹ تھا, کیونکہ میرے اندر جو ڈیوائن اسپارک ہے آپ کے اندر بھی وہی ہے, وہ اسٹریٹ تھا, اس کے اندر یہ سارا کچھ پہلے سے تھا. تو میں نے اس پہ ایمان لے آیا, وہ میرا حصہ بن گیا. باقی لوگ ساری زندگی اس سے ڈینائی کرتے رہتے ہیں, ایکسکیوزز دیتے ہیں, بلیم کرتے ہیں, روتے ہیں, ویک ہوتے ہیں, لیکن وہ ویکنیس کسی اور پہ ڈالتے ہیں. تو میں نے ساری کی ساری ویکنیس خود پہ ڈالی, خاص ساری غلطیاں, سارے نقصان جو مجھے ہوئے تھے وہ میں نے خود پہ ڈالے, تو سارا کچھ آسان ہو گیا. اس کے بعد کوئی گلہ کرنے کے لیے یا بلیم کرنے کے لیے رہا ہی نہیں, میں ہی رہ گیا. تو اٹ واز جسٹ می. تو جب میں ہی رہ گیا تو پھر اور کوئی تھا نہیں بلیم کرنے کے لیے. تو پھر میں نے سوچا چلو اٹھو پھر کام شروع کریں. فرہاد کی طرح, تاکہ اپنی وہ دودھ کی جو نہر ہم نے نکالنی ہے پہاڑ سے وہ نکال لیں. تو بعد میں پتہ چلا کہ آپ جیسے کتنے ہی لوگ ہیں وہ سب اپنی اپنی کدالیں لے کے آگے, اور پھر بول کے لب آزاد ہیں, تیرے ریڈیو آزاد میں چینج ہو گیا.
9: Yeah, I wish more people listen to your program, and you know, if they start listening and applying, oh my God, there'll be a big change. مجھے
4: میں آپ کو میں ایک کمال بات بتاتا ہوں, آپ نے شاید اس طرح نہیں سوچا ہوگا, بیکاز یو کین ریلیٹ ٹو اٹ, آپ کے لیے یہ سمپل ہے, تو آپ نے فوراً چیز کو پکڑا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ اور یہ باتیں اور یہ کام سیدھے ہیں, ٹھیک ہے. اور سارے ریزلٹس جو وہ بتا رہے ہیں, کچھ تیاری نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بتائے چلے جا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کام اوتھینٹک ہے, اور یہ ریزلٹ میں بھی کروں مجھے آ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا بندہ جو کبھی بھی میرے ساتھ نہیں آئے گا اور کبھی اس کو یہ میریکلز دیکھنا نصیب نہیں ہوں گے, وہ سب سے پہلی تھاٹ اس کے ذہن میں کیا آتی ہے؟
9: What?
4: Oh my God, it is so difficult. And he is so difficult. What is he talking about? It is so difficult. جس آدمی کو آپ کو یہ آپ کے اندر سے آواز آئی کہ یہ سیدھا ہے, سمپل کام ہے, اسٹریٹ ہے, اور اس جیسے اگر اور چیزیں ہو جائیں یا ایسی باتیں اور ہو جائیں یا کام ہو جائیں تو دنیا بدل جائے گی, ایسا ہی ہے.
9: Right.
4: وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کتنا مشکل ہے, اور ایسے ہو گئے تو کتنا مشکل ہو جائے گا, اینڈ ہی از سو ڈیفیکلٹ, اینڈ ہز ورک از سو ڈیفیکلٹ, اینڈ ہز پرسنالٹی از سو ڈیفیکلٹ. تو اب آپ سوچیں ان کے ساتھ زندگی بھر آگے کیا ہونے والا ہے, جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. بیکاز اگر میں ڈیفیکلٹ ہوتا تو مجھے مشکل نہ ہوتی, میرے ساتھ کام نہ بنتے, میرے ریزلٹس نہ آتے, میرے رشتے مضبوط نہ ہوتے, فائنینسز نہ اچھے ہو پاتے, ہیلتھ نہ اچھی ہو پاتی, جو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا وین آئی اسٹارٹڈ. سو 30 سال تک آئی واز سفرنگ بیکاز آئی واز ناٹ ود مائی سیلف اینڈ ود دا ٹروتھ اینڈ ود دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ود ورکنگ آن مائی سیلف اینڈ ایکسیپٹنگ ایوری تھنگ اینڈ ورکنگ آن اٹ. دوسری طرف وہ دوسری ٹیم ہے جو کہ یہ ساری چیزیں نہیں مانتے, اور آخر میں جانے سے پہلے تو یو نو ماننا ہی پڑ جاتا ہے, مجبوری ہے, کیونکہ جب سب دکھ جاتا ہے تو وہ اتنی زندگی ضائع ہو جائے گی. اینڈ کین یو امیجن ہنڈریڈز آف ایئرز سے یہ سب ضائع ہو رہا ہے, واٹ اے ویسٹ. یہ بتائیے کب سے سننا شروع کیا؟
9: ایکچولی آئی ہیو بین لسننگ ٹو یور پروگرام ناٹ کنسسٹنٹلی,
4: ٹھیک ہے,
9: یو نو بیکاز اٹس ریسپانسبلٹیز اینڈ
4: ٹھیک ہے
9: job of course, but I started in one day December, I remember 2018. Achha. I was driving, I think you used to have your show on AM
4: radio,
9: 11, yeah. So I was one day I opened my radio and I started listening to your program, and I don't know, I just felt just immediately connected to the program. And I was going through a life changing event that time. So for some reason, I just kept listening to it because it just gave me more strength to come out of my that situation. And I took a break from my job that time. So I kept listening to it just to gain more strength. And I kept listening for like a year or so. And then I got busy with my job. And I think it changed. Then you stopped, transmission on AM, and then you switched to FM, I think.
4: Ji.
9: HD3, and then I did not have that in my car, so I started looking for the car,
4: Good.
9: Which has that radio actually. But so on and off I was listening. Whatever
4: you have been gathering, or on and off if you are gathering it, جب بھی کوئی تکلیف ہوگی نا, میں صرف آپ کو اور آپ کی ریفرنس سے میں بہت سارے اور لوگوں کو بتانا چاہوں, جب بھی آپ کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہوگی, انرجی کو ضرورت ہوگی, اسٹارٹ لسننگ ٹو اٹ اینڈ ٹیک مور ٹائم آؤٹ اینڈ کیپ لسننگ ٹو اٹ, یو ول گیٹ انرجائز اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے. دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ, میں کسی دن ایکسپلین کروں گا آپ کو. لیکن جیسے ہی تھوڑا تھوڑا بھی آپ سنتی ہیں تو یہ بتائیے جو آپ نے سیکھا اس کو کتنے پرسینٹ اپلائی کر پا رہی ہیں ابھی تک آپ؟
9: So the last few months I'm listening quite consistently, and it really helps me because there's so many things you tell, like, you know, like simple roti kapda makan and then exercise and relationships, just simple, you know. So
4: ye bataiye stress ka level kam hua?
9: I usually I'm a happy person, so okay. I try not to take stress.
4: Theek hai.
9: So I keep myself happy, but yes, okay. If there's something, it really, really helps, you know.
4: Self-acceptance mein asani hui?
9: Yes, a lot.
4: اپنے ریلیجن جو بھی آپ کا ریلیجن ہو, رب کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, کریئٹر کے ساتھ,
9: you relate everything to the Quran, you know, and I have I mean, we have been reading Quran, and I learned this from your show, actually, that this book is not to keep on the shelf and then open in the Ramadan and just put it back. So honestly, I started opening and started reading now. You know, whatever surah you mentioned, like Sunday you mentioned Ayatul Kursi, I went home and literally read the meaning of it.
4: Pata chala hai usme kya likh rahi hain aap khuda se?
9: I'm sorry?
4: Did you understand what you are saying, claiming to God? In that Ayatul Kursi, jab aap bol rahi hoti hain Arabi mein, to uska Urdu ka matlab samjha aapne ki kya baat kar rahi hain aap?
9: Yeah, I read in English.
4: Okay, how did you feel? Okay, perfectly fine.
9: Yeah, yes, it was so nice to read the meaning, you know.
4: And how did you feel about it? Do you feel more connected? Ki this is what I am saying, this is what I am uttering. And
9: yes, and actually that's, I learned so many things that if I start talking to you, it will be hours to tell you.
4: Chaliye batai, Rab se relationship better hua?
9: Yes, my namaz has gone better.
4: I don't try to relate it to Quran, but the thing is, जब आप सब कुछ रब से सीखते हैं तो इट और मैं कहूँ या ना कहूँ ये सब वहीं चला जाता है क्योंकि आप इल्म में कभी भी यू कैन नॉट गेट वन फैक्टर वन एलिमेंट आउट ऑफ नॉलेज जो कि क्रिएटर ऑफ नॉलेज है तो वो बात उस तक चली जाती है. ये बताइए लोगों के साथ जो रिलेशनशिप हैं अब कम लोग अपनी ज़िंदगी में हैं और कम लोगों के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं.
9: Yes, yeah. I mean, I even otherwise also, I am a person who keep relation with the people who I am comfortable with.
4: Ji.
9: If I'm not comfortable, I just stop talking to them.
4: Mm-hmm.
9: You know,
4: Theek hai.
9: This is like always has been with me. If I'm not comfortable and if somebody, I know that that person is not right or that person has like, it's hard to understand other people's intentions.
4: Mm-hmm.
9: And what they have in their heart, you know, sometimes they're like double faces, they have something in their heart. And
4: overall, are you more skeptical of people? Aap jaldi ghabra jate hain, dar jate hain, ya aap badi jaldi apne shutter jo hai wo on kar lete hain?
9: Meeting people?
4: Ha, yeah, yeah, meeting people, giving them chances, getting more people into your life. The time lete hain na?
9: Yes, yes, I take time, you know. I mean, you come to know when you talk to people that, you know, if you start feeling that if you can be connected to them or not, you know.
4: आप जब शो सुन रही होती हैं आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो थोड़ी देर के बाद उसका जवाब मिल जाता है साथ ही.
9: Yes, yes, definitely, definitely. Okay. I do get it.
4: ये शो आप ही के लिए आया है और ये जो ब्रेन वेव आती है ये आप ही जैसे लोगों के लिए और हमारी जैसे लोगों के लिए. इसलिए कभी कभी इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जब भी आपको कभी लगे कि कोई थाट है जो बॉदर कर रही है, कोई ऑब्जर्वेशन है जो आप इधर उधर देख रही हैं, कोई चीज़ है जो आप शेयर करना चाहती हैं लोगों के साथ, तो वो थॉट लेके आया कीजिए. उस थॉट को हम एक फूल आप लेके आएंगे, हम पूरा गुलदस्ता बना के आपके और लोगों के हाथ में पकड़ा देंगे. ठीक है?
9: Yeah, actually your program is so, I don't know, it's so amazing that when I am listening to your program, I feel like I'm out of this world.
4: Yeah, वो क्योंकि एक्चुअल में रब आपको ऐसा ही फील कराना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम हर वक्त परेशानियां तकलीफें मसाइल में रहते हैं. Once you get connected to the, आपको जब चार्जर में लग गई है ना आप, तो फिर जैसे फोन फील करता है ऐसे आप फील कर रही होती हैं. जैसे आपको ऑक्सीजन प्योर लग जाए तो जैसे बंदा हाई नहीं हो जाता, तो आप और हम सब लोग हाई हो जाते हैं. इसीलिए तो पता ही नहीं चलता दो घंटे कैसे गुजर जाते हैं. ठीक है?
9: Yeah, 2 hours. Okay, 2 hours. You just keep listening to it, and in fact, if I'm at home, I tell my kids, don't disturb me. You know, because I don't want to even miss a word of it.
4: आपको पता है कितने हस्बैंड्स, कितने मेरे फ्रेंड्स, कितने बच्चे हैं जो कहते हैं कि आपने हमारी माओं को, हमारे हस्बैंड्स को, हमारी बेगमात को एक डिफरेंट इंसान बना दिया और हमारी घरेलू ज़िंदगी इज़ मच मच बेटर. चीज़ों की समझ आना शुरू हो गई है, लड़ाई झगड़े कम हो गए हैं, इरिटेशन कम हो गई है, पर्सनैलिटी क्लैशेस कम हो गए हैं, रिजिडिटी लोगों में कम होती चली जा रही है. अगर ये सब कुछ आपके घरों में और ज़िंदगी में हो रहा है तो इसका मतलब है यू आर द लिसनर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ रेडियो आज सही जगह पे आप हैं. अगर इसके अगेंस्ट जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपके साथ हो रही हैं तो इसका मतलब है ये आपके लिए नहीं है. पैसे फैसिनेशन है, अच्छा लग रहा है, जो भी मामला आते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी ये एक्चुअल में फिर आपके लिए नहीं आया. तो या तो आप अपने आप को चेंज करके एडजस्ट करेंगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसे कैसे, फलां कैसे, नहीं इतना तो नहीं, ये तो दुनिया है, ये तो मसाइल हैं, ऐसे तो करना पड़ता है, देखें ना ऐसा नहीं होता, इसका मतलब है आप हाफ हार्टेड हैं और हाफ हार्टेड आदमी मारा जाता है. यू हैव टू टेक वन साइड, या आप फोर्सेज ऑफ डार्क के साथ हैं या फोर्सेज ऑफ लाइट के साथ हैं. ये बात कि आप गलतियां नहीं करेंगे, गुनाह नहीं होंगे, परेशानियां नहीं होंगी, दैट्स ग्रांटेड, सब कुछ होगा, दोनों साइडों पे होगा, गलतियां दोनों तरफ होंगी आपकी, बट एटलीस्ट यू हैव टू चूज द टीम. ठीक है?
9: यस, Yeah.
4: Nice of you.
9: And, you're the last. One more thing. I'm sorry.
4: I'm the last of the show.
9: What you say? दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करिए रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा. Actually, this always reminds me of my father. I don't know. It just links to him because he always used to say the same thing.
4: Actually, ना वो पाकिस्तान से थे?
9: No, I'm from India originally.
4: अच्छा. ये जो हमारे दो तीन लोग हैं जो ये चीज़ें कहा करते थे, मुझे बाद में पता चला एक्चुअली हमारे एक बहुत बड़े राइटर थे पाकिस्तान के, शफाक अहमद साहब, ये वो कहते थे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. मैंने किताब से, मैंने रब से लिया था, वो कहते थे तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है. तो उससे हुआ क्या कि जब मैंने चीज़ों को, जब मैं सोचा कि जब आप आसानी करेंगे तो उसकी रिटर्न में आप ही के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, अगर रब कह रहा है तो ऐसा ही होगा. तो मैंने आई केम अप विद इट लाइक दिस, बट वो उन्होंने अपने ज़माने में कहा हुआ था, क्योंकि ये सब हम एक ही सोर्स में हाथ डाले हुए हैं, वहीं से ये सब कुछ आता है. तो कभी कभी इवन सरप्राइजिंगली कुछ नज़में ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मैं लिखता हूँ या किसी ने लिखे होते हैं, वो एग्जैक्टली वही होते हैं जो सेंचुरीज पहले कोई कह चुका होता है. सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. आपने अपनी आसानी ज़रूर करनी है हमारे लिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसका हक अदा करने के लिए कभी कभी खुद आके कॉन्ट्रीब्यूट करें, अपना पॉइंट दें. आज मैंने आपको इतनी लंबी बात इसलिए भी ऑन एयर की कि बहुत सारे लोग ये कहना चाहते हैं लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते इस तरह खुलकर, तो आपने उन तमाम लोगों को रिप्रेजेंट किया. आपको भी कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ रेडियो आज़ाद और ग्रेट फॉर मैम, थैंक यू वेरी मच. वालेकुम सलाम. और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी. दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ. यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us. इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे. स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर. आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं. और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद. दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा. खुदा हाफिज़.
10: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
11: Inspire FM.
12: Inspire 105.1 FM.
13: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. When you hear the adhan, answer the call. Every step you take to the masjid is rewarded by Allah, and every prayer in congregation brings 27 times more reward than praying alone. Make the masjid a part of your daily life. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
14: Did you see that guy on TV?
15: What, that No Comment guy?
14: Yeah, he was sick. What was his name?
15: I think it was Atiq Malik.
14: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
16: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
14: Liberty Law, there when you need us most.
17: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests, with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386. Email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
18: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATS results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
19: सेंट्रल बेडफोर्डशायर कॉलेज अब सितंबर 2026 से शुरू होने वाले एक्रेडिटेड हम लुटन में चाइल्ड केयर, ईसोल, इंग्लिश और मैथ्स, एम्प्लॉयबिलिटी हमें अप्लाई करने में आपकी मदद करने का मौका दें। आप 26 अगस्त से हर बुध सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे के दरमियान डेलो कम्युनिटी सेंटर LU1 1TV या अपर जॉर्ज स्ट्रीट में ड्राइव हब LU1 2QX पर हमसे मुलाकात कर सकते हैं। पूरी उम्र काम आने वाली ये क्वालिफिकेशंस हासिल करके बेहतर बनाने के लिए अभी अप्लाई करें।
20: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
21: And now, get ready for your new weekly dose of sports talk.
22: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
23: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
21: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
4: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए। हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं। मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आजाद हैं तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम।
5: हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, हेलो एंड वेलकम डालस फोर्ट वर्थ एंड द होल वर्ल्ड लिसनिंग टू रेडियो आजाद वॉइस ऑफ द पीपल। तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सुन रहे हैं जी आप बोल के लब आजाद हैं तेरे।
4: इंसान जो कि मेरा मेरी फैसिनेशन है, रोमांस है मेरा ह्यूमन बीइंग, उसके बाद रब मतलब जो क्रिएशन है क्रिएटर, उसके साथ ये दुनिया जो कि मेरे साथ क्रिएट की गई है, और चौथा मैं। ये चार चीज़ें, इन चार चीज़ों के बारे में बोल के लब आज़ाद हैं तेरे रियलिस्टिकली इनके बारे में बात करना चाहता है, फैलेसी मिस्टेकन बिलीफ पे नहीं। जो 10-15-20-25-30 साल तक सीखा समझा और मुझे सिखाया बताया समझाया गया वो नहीं, उसको छोड़कर जब मैं ईमान लाया, ठीक है जी, मुसलमान होना और चीज़ होती है, ईमान लाना और चीज़ होती है। इसीलिए जो हुज़ूर पाक के पास जब लोग आए तो रब ने कुरान में उनसे कहा कि इनसे कहो कि तुम मुसलमान हुए हो, तुम ईमान नहीं लाए, और आगे फिर ईमान लाने वालों की उन्होंने लिस्ट की कि उसमें ये तमाम चीज़ें जब तुम्हारे अंदर आएंगी। तो जब ईमान आदमी ले आता है किसी एक चीज़ के ऊपर तो फिर वो आदमी वैसा नहीं रहता जैसा वो था, वो वैसे नहीं सोचता जैसे वो सोचता था, वो वैसे नहीं करता जैसे वो करता था, वो चीज़ों में मकसदियत मीनिंग ढूंढता रहता है, उन चीज़ों में खुशी सुकून रिजल्ट्स ढूंढता रहता है, उनसे वो रिलेट करना मार्फत की तरफ वो जाता है कि अगर ये फूल इतना खूबसूरत और इतनी कमाल चीज़ मुझे मिल गई और इतना कमाल इंसान मुझे मिल गया तो इसको क्रिएट करने वाला, इसके बीच में ये नज़ाकत से लेके खूबसूरती और ये इमोशन इंसान के डालने वाला जो है वो कितना कमाल होगा, और मेरे तक जो चीज़ आई है मुझे उसके साथ कैसे डील करना है। इसलिए वो कमिट करना है जो आप दे सकें, वो बात करनी है जो आप कर सकें या करके दिखा सकें या उस पर एटलीस्ट कोशिश करें, और ये सब कुछ आप जब कर पाएंगे और इस दुनिया के लिए उतना करना है मुझे जितना मुझे इसमें रहना है, तो और लोगों के साथ भी समझना है कि लोग रास्ते के हम सफ़र हैं, सफ़र नहीं है, सफ़र हमारा वो मकसद है और एंड हमारा लोग नहीं है, वो ज़ात है जिसने हमें, जो हमारा शुरू था वही हमारी इब्तिदा थी वही हमारी इंतहा है, और इसके बीच में अगर किसी को लगता है कि मैंने इस सर्कल से और इस रास्ते से निकलने की कोशिश नहीं की तो 30-32 साल में वही सारी कोशिशें करता रहा, पहले मैं वो सारी चीज़ें करता रहा कि मैं किसी तरह इस ट्रूथ से अपनी जान छुड़ा लूँ, और ये ना हो ऐसे, और मैंने हर वो काम करके देखा, लेकिन इससे कोई छूट नहीं है, इंसान को इधर ही वापस आना पड़ेगा। वो जहाँ से शुरू हुआ था वो वहीं पे जाके ख़त्म होता है, लेकिन उसके बीच में उसने किया क्या, उसने सोचा क्या, उसने बनाया क्या, उसने बनाकर दिया क्या, उसने क्रिएट क्या किया, उसने फील क्या किया, उसने लोगों के अंदर क्या जज्बा पैदा किया, और उसने कैसे ट्रूथ को ट्रूथ की तरह, उसने दिल इतना बड़ा किया, दिमाग इतना बड़ा किया अपना, कि सच को, हक सच को सच के तौर पे ले सके, उसमें अपनी ख्वाहिशात ना डाले, और जब कोई चीज़ आए कहीं से तो उसमें अपनी ज़ात से चीज़ें ना डाले, जिसने जो तोहफ़ा दिया है उसको वैसे ही लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करे और अपनी पर्सनल ख्वाहिशात उसमें ना डाले। वो एक लाइन थी आज़ाद थाट में जो मैंने लिखी थी कि विजडम बिगिनस फ्राम द डे You start seeing things the way they are, they actually are, rather than what you want or desire them to be. ये जब आप इससे बाहर निकलेंगे ना, जो चीज़ जैसी है रब आपको हकीकत पसंद बनाना चाहता है, रब हक है सच, वो आपको सच से कनेक्ट करना चाहता है, झूठ और धोखा ये दोनों चीज़ें आपका उससे कनेक्शन काट देगा, वक्ती भी होगा तो कट जाएगा, जब तक आप उससे रुजू नहीं करेंगे जिसके बारे में वो बार बार कहता है, उसी को वो रहमत भी कहता है, उसी को वो तौफीक भी कहता है, उसी को अपनी मगफरत भी कहता है, और यही वो कहता है कि कुछ कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन मेरी रहमत से मायूस नहीं होना। क्योंकि इबलीस वर्ड जो है ना अरबी में, उसका मतलब ही ये है इंतहाई मायूस, वो मायूस है, हम मायूस नहीं हैं। किसी वक्त कहीं पर कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी कोई मिरेकल भी कर सकता है, अपनी कोशिश आदमी करता रहे, अपने आप को बेहतर करता रहे, कॉन्स्टेंटली रिफॉर्म करता रहे, ये हमारा मकसद है, ये शो का भी मकसद है, ये हमारी ज़िंदगी का भी मकसद है, ये इंसान होने का भी मकसद है। इससे ज़्यादा इस बात को मेरा नहीं ख्याल मैं एक्सप्लेन बेहतर कर पाऊँगा। सही हो गया
0: जी ना?
4: गुजारा हो गया
0: जी?
4: अब आपको जाने दूँ?
0: हाँ जी, आजाद लाला।
4: खुदा हाफिज़। किसी और मेहरबान को लेते हैं जो मोहर मेहरबान लग रहे हैं। रेडियो आजाद ही रौंदिए।
1: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम है।
1: मुबारक मुबारक।
4: सलामत सलामत। पुराने जमाने में हमें इतना ही पता था।
1: किसी ने कहा कि हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए।
4: बिल्कुल।
1: अब तो बदनामी का शोहरत से ये रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। तो आजकल जो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी, चाहे वो रेडियो स्टेशन हो, मूवीज हो, टीवी मीडियम हो, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे किसी का चैनल हो, सबको, हर लोग जो है सब कुछ करने को तैयार हैं। किस लिए? टू गेट द वायरलिटी। और वायरल होने में क्या चक्कर होता है? उनको कॉमेंट्स भी मिलते हैं, उनको अट्रैक्शन भी मिलती है, उनको फॉलोशिप भी मिलती है,
4: हम वो सारे क्वालिफिकेशन,
1: उनके लाइक्स भी मिलते हैं,
4: हम वो सारी क्वालिफिकेशन क्वालिफाई नहीं करते, इसीलिए हमें इनमें से कुछ भी नहीं मिलता और ना हमें ये चाहिए।
1: आगे सुनिए तो सही। तो हुआ क्या कि उन लोगों ने शॉर्ट टर्म गेन के लिए एक लॉन्ग टर्म लॉस किया, जिसको रेडियो आजाद ने इन 14 सालों में ग्रैब किया। और वो लॉन्ग टर्म गेन क्या था? इंटेग्रिटी का। तो रेडियो आजाद के ये जो 14 साल गुजरे वो इंटेग्रिटी में गुजरे, और जिसको आखिरी दम तक शायद रेडियो आजाद का ये एक स्लोगन और एक लोगो भी बन सकता है, वो हमें, हम सुनने वालों को, देखने वालों को कहाँ नजर आता है? अगर कोई पूछे, वो नजर आता है आपके फंड रेजिंग में। जब एक प्लेटफॉर्म से मुंसलिक होकर, देसी लोगों में बहुत गिने चुने उंगलियों पे लोग होंगे, जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे बैठेंगे और लोग फंड रेजिंग के लिए बात करेंगे, तो वो लोग अगर उस प्लेटफॉर्म से मुंसलिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रब की तरफ से ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ऑन एयर आकर अपनी हक हलाल की कमाई से पैसा कमाकर अगर वो उस प्लेटफॉर्म के थ्रू डोनेट करते हैं, तो वो उस प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी को शो करता है। वो इंटेग्रिटी रेडियो आजाद की कहाँ नजर आती है? उन तस्वीरों में जो आप अपने प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं, जो हम देखते हैं, चाहे हम इस शहर में हैं या नहीं है, वो चेहरे जो उस क्राउड को देखकर आपके प्लेटफॉर्म की इंटेग्रिटी नजर आती है। क्योंकि जनरली जब आप इवेंट्स में जाते हो तो जो लेवल ऑफ क्राउड है वो लेवल ऑफ कमिटमेंट को शो करता है। तो ये रेडियो आजाद की इंटेग्रिटी जो उसने कमाई है। तो बींग यू नो कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, मैं रब करे कि इस सफर में जो रेडियो आजाद का आने वाला है, और बहुत से खूबसूरत जहन और दिल रखने वाले लोग आपकी टीम में और इस प्लेटफॉर्म के लिए जरिए जो है, एज अ ऑर्गेनाइजर, एज अ स्पॉन्सर, एज अ कॉन्ट्रीब्यूटर, एज अ लिसनर, वो काम करें और ज्वाइन करें, और आपका काम एज अ आजाद खान इट्सेल्फ और रेडियो आजाद का नाम हम लोगों को इसी तरह से एंटरटेन, इन्फॉर्म और इंस्पायर करता रहे.
4: सो नाइस.
1: और आप और ज्यादा तरक्की करते रहे.
4: आज हमने एक नया 14 साल के बाद हमने आज पहली दफा मैंने वर्ड यूज किया आजादियंस का. अगर हमने कमेंट्स वो जो हैं इस सोशल मीडिया के ऊपर आयशा जी और हमारी जो टीम मैनेजमेंट वाली है उन्होंने जब डाला तो मैंने उसमें लिखा व्हाट कैन आई से ट्रूली अ ब्लेसिंग फॉर मी एंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ अदर्स जो आज़ादियंस हैं. तो आज मैंने पहली दफ़ा खुद ये वर्ड यूज़ किया है. मैंने कभी भी नहीं यूज़ किया ना किसी और ने शायद किया हो. लेकिन मेरा ख्याल है ये जो 14 साल के बाद अब मैं जैसे इसको विजन जहाँ तक थी
1: फील कर
4: वो अक्सर लोग जो मुझे पूछा करते थे कि जी आप रेडियो आज़ाद को कहाँ देखते हैं तो मैंने कहता था जी अपने वक्त पर आएगी. लेकिन अब मुझे रेडियो आज़ाद जहाँ नज़र आ रहा है और जिन रीजंस की वजह से नज़र आ रहा है उसमें जितना टाइम पड़ेगा, जितनी एफर्ट्स पड़ेंगी, जितनी रिसोर्सेज पड़ेंगी, जितनी हमारी टीम पड़ेगी, जो कुछ भी होगा वो सब कुछ मैं इतने सालों से जमा कर रहा था कि ये बेसिक्स हो जाए, हमारी ट्रेनिंग भी हो जाए हम तमाम लोगों की, लोगों को अपनी यू नो चीज़ों में वीकनेसेस स्ट्रेंथ्स सब नज़र आ जाए, उसके बाद हम इनके ऊपर काम करें और टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइंड हो गई है. तो अब इंशाल्लाह वो मौका आ गया कि हम इसको आज़ादियंस का ये जो काम है हमारा रेडियो आजाद की, का उसको आगे बढ़ा सके. जी
1: एक इस बार आज के दिन की मुनासिबत से क्योंकि आपने इस पौधे को बड़ा किया 14 साल का, जब कोविड आया था ना आजाद तो बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत टफ डिसीजन लिए थे. किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी टाइम इज टफ सो वी शुड लेट गो ऑफ पीपल. कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि टाइम इज टफ सो वी शुड नॉट लेट गो ऑफ पीपल. तो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा पला पूरा किया, या आपका थॉट प्रोसेस था या जो भी था इसमें बीइंग अ लीडर और एक जनरली लाइफ में हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग, और इसमें कौन से फैक्टर्स आप कंसिडर करते हैं स्पेशली इमोशंस को, क्योंकि जब एक चीज आपने बनाई होती है, लगाई होती है और उस फैक्ट और आप एक लीडिंग पोजिशन पे हैं तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन मेकिंग.
4: बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि आप लोग सिर्फ रेडियो आजाद के हिसाब से तो दूंगा ही मैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको जिन टीम्स में आप लोग काम करते हैं, जिन फैमिलीज़ में, जैसे फैमिली भी एक टीम होती है, आप अपनी फैमिली में इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं जो आपका सवाल है जिसका जब मैं जवाब दूंगा, और साथ साथ रेडियो आज़ाद की चीज़ भी हो जाएगी. देखिए एक तो मैं रेडियो आज़ाद का फाउंडर हूँ क्योंकि बोल क्लब आज़ाद हैं तेरे एक शो था. पहले मैं किसी और रेडियो स्टेशन वगैरह के लिए काम किया करता था. कुछ साल तक हमने एक दो स्टेशन पे काम किया, बल्कि तीन स्टेशन पे डिफरेंट पे काम करने के बाद हमने अपना रेडियो स्टेशन जब पहला खोला, टाइम ब्रोकेज वगैरह जब हमने किया तो वो 3 घंटे का एक शो था बोल के अलावा आज़ाद हैं तेरे. उसमें फिर आयशा जी हमारे साथ आई और उसके बाद तो इस तरह रेडियो आज़ाद, और फिर लोगों से ही हमने 30-32 नाम थे जो ऑन एयर हमने लोगों ने दिए, फिर हमने उसमें से 3 शॉर्टलिस्ट किए, उसके बाद रेडियो आज़ाद का नाम जो है वो फाइनल जो है वो हुआ. उसके बाद इसको आप ये कह सकते हैं कि चलें फाउंड हो गया, फाउंडर हमें कर लीजिए, लेकिन रेडियो आज़ाद को बड़ा करने की जो जिम्मेदारी है और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो क्रेडिट है वो आयशा जी को जाता है. और उसके बाद साथ साथ जो हमारी टीम आती रही, हर एक ने हस्बे तौफीक हस्बे हाल जो भी साथ साथ हमें सपोर्ट किया. ये जो आपका क्वेश्चन है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ा करते हैं तो उसमें जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है और जो इमोशंस उसके साथ आपके जो होते हैं, कि मैं जब किसी चीज़ को पहले जब ज़िंदगी में मैं कोई चीज़ें वगैरह बनाता था तो वो और तरीके से होती थी, इसलिए उसमें कोई इतना कमाल नहीं हुआ, चीज़ें बन गई, चलती भी रहीं और हो भी गई. लेकिन बोल के लब आज़ाद हैं तेरे की वजह से, क्योंकि रेडियो आज़ाद बना है तो इसकी जो सारी की सारी विजन थी उसमें मेरा पूरा फोकस एक ही होता है कि जिस मकसद के लिए बनाया गया है उस मकसद को नहीं छोड़ना, और जो भी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी उसमें सिर्फ वो अपॉर्चुनिटीज़ पिक एंड चूज़ करनी है जो उस मकसद से रिलेट करती हैं. और अलाइन मैंने सिर्फ इसको लॉज ऑफ यूनिवर्स के ऊपर रखा हुआ है, रब के जो कानून है वो अगर इसके अंदर आते हैं जिसमें नीयत से लेके एक पूरा प्रोसेस है काम करने का, और अगर ये सोशल बिजनेस है तो फिर वो मैंने हुजूर पाक से सीखा कि वो कैसे बिजनेस करते थे अपनी चीज़ की का ऐप बताकर, तो इसमें कमज़ोरी क्या है वो सब चीज़ें मैं खुद बताता हूँ, इससे पहले मुझे लोग बताएं, जैसे मैं अपनी ज़ात की भी सारी कमज़ोरियाँ खुद लोगों को बताता हूँ कि वो मुझे बताएं आगे से, क्योंकि मैं होश की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं. तो जहाँ तक चीज़ है, आप किसी एक चीज़ जैसे आपका बच्चा होता है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव करके रखेंगे और सब कुछ अपने पास ही रखेंगे तो वो कभी बड़ा नहीं हो पाएगा. तो उसकी को आज़ादी देनी पड़ती है, लोगों को चीज़ों में कुछ फ्री हैंड देना पड़ता है. हर आदमी को कुछ जॉब्स होती हैं, जॉब اپنے اپنے جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے, اس کے حساب سے وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو جب یہ جابز یا آپ اس کو رول ڈیفائن کر, رولز ہوتے ہیں سب کے اپنے اپنے, کئی رول لوگ زیادہ پوٹینشیل ہوتا ہے اور مشکل تکلیف پریشانی میں وہ زیادہ رولز کر رہے ہیں کیونکہ کر رہے تھے, وہ آہستہ آہستہ ان کے رول کو آپ نے بالکل کلین کر کے کلیئر کرتے جاتے ہیں. جب تک ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے گا, وہی شعر جو میں کروڑ دفعہ سنا چکا ہوں اور ہمیشہ ہر دفعہ نیا لگتا ہے, زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب, زندگی ایک چیز جو چلنے والی ہے جس میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, اس کو کانسٹنٹلی ساتھ چلائے رکھنے کا طریقہ عناصر میں ظہور ترتیب, ہارمنائزنگ افیکٹ ان دا آل ایلیمنٹس پریزنٹ. موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا, انہی ایلیمنٹس کا ڈس ارے ڈسٹربنس جو ہے وہ موت ہے کسی بھی چیز کی. تو آپ نے ایلیمنٹس دیکھنے ہیں کون سے ہیں, ان کا اسٹرینتھ دیکھنی ہے, ہر ایلیمنٹ میں اسٹرینتھ ہوتی ہے اور ہر ایلیمنٹ میں ویکنیس ہوتی ہے. اس کے بعد جو اوپر بیٹھ کے پلان کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر ایلیمنٹ کو دیکھتا ہے, اور اس پلاننگ کے اندر بھی جو پلان ہے نا, اس کا جو اوپر پیکج ڈیل ہے, اس میں بھی ایک اسٹرینتھ اور ایک ویکنیس ہوتی ہے. تو اس کو جانتے ہوئے باقی لوگ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑتا ہے ان تمام چیزوں سے, اور پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ ماحول انوائرمنٹ کنڈیوسو ہے کہ نہیں اس گول کے لیے جو آپ چاہتے ہیں, یہ لوگ جو آپریٹ کر رہے ہیں یہ لوگ کنڈیوسو ہیں کہ نہیں, اور اگر ہیں تو کتنے ہیں, اور نہیں ہو سکتے تو کیا ریزن ہے, کون سی چیزیں بیچ میں سے نکال دی جائیں گی تو یہ زیادہ کنڈیوسو اور زیادہ بہتر پرفارمرز بن سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو فری ہینڈ بھی دینا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ آبزرویشن بھی ساتھ آپ نے رکھنی ہوتی ہے, اور جہاں پر بھی چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں آپ دوبارہ الائن کرتے ہیں ان تمام چیزوں کو, اور ساتھ ان کو یہ ریزنز بتاتے بھی ہیں اور ساتھ چلاتے بھی ہیں. تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے, جیسے گھر میں بہت پینس ٹیکنگ پروسیس ہے, اور جو بھی گھر کا لیڈر ہوتا ہے اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن اگر وہ چیزوں کو آبجیکٹیولی نہیں دیکھ پائے گا, اور جس کا جتنی پنشمنٹ بنتی ہوتی ہے اتنی جس کا جتنا ریوارڈ بنتا ہوتا ہے, ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ کا سسٹم رب سے آپ سیکھتے ہیں, کیرٹ اینڈ اسٹک کا انسینٹیو دیتے ہیں, اس کے حساب سے آپ لوگوں کو کام بھی دیتے ہیں اور چیزیں بھی آپ ان کو بنا کے دیتے ہیں, اور پھر آہستہ آہستہ چیزیں انکریز کرتی ہیں. کیونکہ خود میں سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس والا آدمی ہوں, میں خرگوش کے کام پہ کبھی مجھے نہیں پسند تھا, وہ کچھوا بہت اعلیٰ تھا جو ریس آخر میں جیت گیا. سلو اینڈ اسٹڈی, اس پیشنس کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اسی حساب سے آپ نے ان چیزوں کو لے کے جانا ہوتا ہے. ان کے اندر آپ نے فیتھ بھی ڈالنا ہوتا ہے, سب کچھ انکلکیٹ کرنا پڑے گا آپ کو. گھر میں جیسے آپ لوگوں کو ٹرین کریں گے, سسٹم بنائیں گے, اسی کا آپ کو بعد میں فائدہ ہوگا, نہیں کر پائیں گے بہت بڑے بڑے آپ کو نقصان ہو جائیں گے. جو چیز آپ اس گھر سے کر پائیں گے وہ آپ کی وجہ سے ہے, بائی دا وے لیڈر کی وجہ سے, جو چیز آپ اس گھر سے نہیں کر پائیں گے وہ بھی آپ کی وجہ سے ہے. اس لیے آپ نے ٹف لو کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کرنا ہے, لیکن ذہن میں ہمیشہ دوسروں کی بھلائی, آؤٹ فٹ کی بھلائی اور مقصد پہ آپ نے لگے رہنا ہے. جب تک آپ یہ سارے کام کریں گے اور کوئی چیز آپ کا جو اوپر بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ کبھی کسی سے آپ کمپیٹ نہیں کرتا, وہ ٹیم کا کیپٹن جو ہوتا ہے وہ کبھی کسی بندے سے کمپیٹ نہیں کرتا, اور جس بندے میں یہ کمپٹیشن یا اپنی خواہش یا اپنی چیزیں یا فیورٹزم ہوتا ہے وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا, چاہے وہ چھوٹی سی آرگنائزیشن ہو, چھوٹا سا گھر ہو یا بڑی سے بڑی کمپنی ہو, وہ اپنے آپ سے باہر نکل کر ظرف بڑھانا پڑتا ہے اپنا. اور ظرف کیا ہے, دی ابلٹی ٹو تھنک اینڈ ٹو ڈو بگر اینڈ بیٹر دین یور سیلف. جب آپ یہ انٹروڈیوس کرائیں گے, جیسے رب نے کہا کتاب سے, آپ وہ لوگے جتنا آپ کا ظرف ہے, تو جتنا بڑھاتے جاؤ گے ظرف کو اتنے ریزلٹس آتے چلے جائیں گے. خود کسی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, جس نے جو کیا اس کے حساب سے آپ نے ریوارڈز دینے ہیں, نہیں کیا تو اس کے حساب سے آپ نے پنشمنٹس یا جو پازیٹیو ری انفورسمنٹس ہوتی ہیں آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں. دوسری بات, آپ کا دل گردہ اتنا ہونا چاہیے کہ اس میں سسٹم میں اگر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے, جیسے کینسر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پوری ریڈیشن, کیمو تھراپی اور جسم کو کاٹ کے پارٹ کو نکالنا ہے, اس کے لیے آپ نے بروٹلی آنیسٹ ہو کر نکالنا ہے, کیونکہ آپ لائل ہیں اس کام سے تو آپ نے سمجھنا ہے. اور جو لوگ اس کام کے لیے نہیں ہیں وہ نکلیں گے, اور جو ہیں وہ لوگ وہاں پہ رہیں گے اور اس کے ریزلٹس آئیں گے. سو یہ آپ نے سمجھنا اور کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے بڑا دل چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے بہت لوگ بہت کچھ سوچیں گے آپ کے بارے میں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگ, کیونکہ جب آپ فیصلہ کرتے ہیں نا, ہر بندے کو جسٹس پسند ہے, بس جسٹس کرنے والا نہیں پسند ہوتا, کیونکہ جب جسٹس ہوتا ہے تو ایک کے حق میں ہوگا, ایک کے خلاف ہوگا, جس کے خلاف ہوتا ہے اس کو آپ بالکل پسند نہیں ہوتے. لیکن ट्रेन करके लोगों को इतना समझाना और उनको पता होना कि इसका भी कोई रीज़न है, पीछे हट जाए खैर है कोई बात नहीं, ये समझना ज़रूरी होता है। जिसमें ये समझ नहीं होती वो सिस्टम उसको, और सिस्टम ऐसा है जैसे रब का सिस्टम है, वो उसको खुद ही उगल देगा। वो जैसे लोग जिन्होंने आते हैं टीम में, जिन्होंने जाना होता है, मैं पहले बता देता हूँ, वो नहीं टिकते, और जिन लोगों ने टिकना होता है वो टिकते हैं। और इससे कोर टीम भी होती है, वो लोगों का एक जगह पे होना, तीन चार लोग जब मिल जाते हैं ना, तीन चार लोग, एक बंदा एक हद तक ही मिरेकल करेगा, दो बंदे उससे ऊपर मिरेकल हद तक कर सकते हैं, तीन चार लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक डायरेक्शन हो जाती है, तो दुनिया में कोई किसी भी चीज़ को कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। बड़ी से बड़ी कंपनीज भी इसका मुंह बोलता सबूत है। तो दैट्स द होल प्लान। अपने आप से बाहर निकलना सीखना पड़ता है, दिल को बड़ा करना पड़ता है, लोगों की बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, उनका जो गिफ्ट है उस पर फोकस करना पड़ता है, उनकी वीकनेसेस को आहिस्ता आहिस्ता वो सोनार की तरह टिक टिक टिक टिक हथौड़ी की तरह करके, लेकिन साथ इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। किसी को जब तक आप लोगों को कुछ देंगे नहीं, आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको सब कुछ मिल सकता है जब तक आप लोगों को वो देंगे जो उनको चाहिए। ये सब जब आप करते रहेंगे तो चीज़ें सीधी रहेंगी। और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, मकसद से नहीं हटना, चाहे कुछ भी हो जाए। सारी दुनिया एक तरफ जा रही, जाते रहें, मैंने सारी दुनिया को पिछले चार डेकेड्स में सबको वापस आते देखा है, सबको वापस आते देखा है, मैं एक दिन भी वापस नहीं गया। स्पेशली जब मुझे ये समझ आ गया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, एक दिन ऐसा नहीं आया जब मैंने डाउट किया हो अपनी इंटेंशंस को। अगर कहीं गड़बड़ हो गई है, काम नहीं हो रहा, तो उसका मतलब है मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ, मैं ही कहीं गलती कर रहा हूँ, या जिस जिससे गलती हो रही है वो भी मेरी ही गलती है, इसको मुझे ठीक करना है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ज़िंदगी के शुरू के सालों के अलावा उस वक्त समझ नहीं थी कि मैंने जो काम को पकड़ा हो, एक तो वो काम सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि जब तक मैं उस काम में खुश हूँ मैं सक्सेसफुल हूँ, जब तक मैं उस काम पे लगा हूँ मैं खुद सक्सेसफुल हूँ, जब तक वो छोटे मोटे रिजल्ट्स दे रहा है वो काम सक्सेसफुल है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काम सक्सेसफुल है। दुनिया मेरे काम को या मुझे कैसे देखती है, दुनिया इस काबिल अभी नहीं हुई। अभी दुनिया ना छोटे बच्चे की तरह, वो चलना भी नहीं सीखा उसने, तिफले मकतब की तरह, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, ठीक है, तो उस अभी वो बहुत लंबे चक्कर काट के वापस आएगी, क्योंकि मैंने जिस सोर्स में हाथ डाला है उसी ने दुनिया बनाई है, वो दुनिया पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में सब देख चुका। उसके बाद उसकी चाहत को जब आप समझ जाते हैं तो फिर कोई मसला रहता नहीं है कि आप कभी वापस आएंगे, आप सिर्फ आगे जाएंगे। एंड वन डे यू विल क्रिएट समथिंग बिगर बेटर देन योर सेल्फ एंड देन यू विल फेड इन ओब्लिवियन। यू डोंट वॉन्ट एनीथिंग फॉर यू। ये बूटा किसी के लिए लगाया गया है, ये इसके फल आप थोड़ा बहुत और बाकी सब किसी और को मिलेगा, इसकी छांव किसी और को मिलेगी, और जो जितना अच्छा इसको आगे लेके चलेगा ये उसके लिए होगा। मेहरबान हमारे साथ थोड़ी थोड़ी करते हैं उनसे बात। रेडियो आज रोंदिए।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर
4: जी। वालेकुम सलाम मैम,
2: क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत मुबारक हो 14 खूबसूरत और प्यारे साल रेडियो आजाद के लिए।
4: सो ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। आवाज में बड़ी खनक है, खुश लग रही हैं।
2: देखिए, खुशी महसूस करने वाली चीज होती है, अगर ना भी होना तो भी मुस्कुराहट सजानी चाहिए, क्योंकि उससे फिर बहुत से लोगों का भला भी हो जाता है।
4: वो भी, और आपको पता है कि आपके ब्रेन को नहीं पता कि आप खुश हैं, यानी जब आप मुस्कुराती हैं या खुश रहने की कोशिश करती हैं तो वो आपको वही फीलिंग देना शुरू कर देता है।
2: जी बिल्कुल, और मैं बहुत बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ अपने आप को, खुशनसीब की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी और इतनी खूबसूरत टीम के साथ मैं जुड़ी, मुझे टाइम, मतलब मुझे यहाँ पर अपनी बात कहने का एक फ्रीडम मिला जो कहीं और प्लेटफॉर्म्स में नहीं मिलता। अपनी मर्जी से हम टॉपिक चूज करते हैं और फिर उसके ऊपर जितनी बात कर सकते हैं कर सकते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें हमें कुछ फिल्टर करके बात करनी पड़े या कहीं रोक टोक हो। तो आपका सिर्फ शो ही नहीं सर, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, एक्चुअली आपने रेडियो आज़ाद की पूरी टीम को ये फ्रीडम दी है, जिसकी वजह से हम सारे बहुत ब्लेस्ड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आयशा जी जैसी हमें जो है वो मेंटोर दी हैं, जो कि लिटरली शी इज़ वेरी ऑसम वुमन, क्योंकि वो जिस तरह समझाती हैं, जिस तरह गाइड करती हैं और जितनी एफर्ट्स वो उसमें सब डालती हैं ना, इट्स रिमार्केबल। तो आपको और आयशा जी को तो लाइक सबसे ज़्यादा मुबारकबाद, और फिर उसके बाद जितनी भी टीम मुझसे पहले थी, जो अभी भी मेरे साथ सब आरजेज हैं, सबको मुबारक हो, और सबको अपना अपना शेयर, अपने अपनी एफर्ट डालनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जॉब कर रहे हो, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मुझे रेडियो आज़ाद के नाम से जानता है या मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, तो मुझे ये टैग नेम जो है ना, ये लिटरली बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड लगता है. और मतलब कहते हैं ना, एक अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडनेस फील होती है कि यार मैं इस टीम के साथ हूँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती हूँ. खासतौर पर आप लोगों का जो रेडियो थॉन था वो तो इट्स अ ब्लास्ट, क्योंकि जिस तरह से आपने और आयशा जी ने लेकर चले, और ऑब्वियसली ये बात रिमार्केबल होती है कि एक फास्टिंग के वक्त में जब हम बोल बोल के थक जाते हैं, हमें थर्सनेस फील होती है, लेकिन वो सब होने के बावजूद एक कहते हैं ना, एक मिशन को लेके चलना और उसको आगे तक प्रोसीड करना, ये कोई इतनी आसान काम नहीं होता है. लोग समझते हैं कि आप दो घंटे बैठे हैं बात कर रहे हैं. मैंने कहा आप अकेले बैठ के बात तो करके देखें, जब तक आपके लिसनर्स आपके साथ नहीं जुड़ते ना, आप उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाते ना, इसका मतलब आपने उनके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाया. और आवाज के साथ उसका रिश्ता बनाना सबसे डिफिकल्ट काम.

चुका हूँ अभी तक, कहीं पर ये ऐसे नहीं होता। तो जब आप कोई चीज़ डिफरेंट बनाना चाहते हैं, उसका डिफरेंशियल एडवांटेज डिफरेंट चाहते हैं, जब आपके गोल्स डिफरेंट हैं, जब आपका मकसद डिफरेंट है, तो फिर आपकी टीम, आपके लोग, ये तमाम चीज़ें डिफरेंट होंगी, तो फिर आप उस मकसद की तरफ जाएंगे। सो वेरी ग्रेटफुल मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। रेडियो आज़ाद, यू ऑन द एयर। हेलो हेलो, आप कट गए जी, दोबारा कॉल कर सकते हैं। बर्नौल नहीं है हमारे पास, 972-501-9390। सुन रहे हैं आप रेडियो आज़ाद का ये स्पेशल शो जो हम कर रहे हैं जी आपके साथ, और उम्मीद करते हैं कि चीज़ें और भी ज़्यादा बेहतर होती चली जाएंगी। नंबर अगर आपका चल रहा है साथ साथ, तो आप लोग कॉल्स करते रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपका हम इसके बाद भी आपसे थोड़ा सा टाइम हम रेडियो आज़ाद से ले सकें। नंबर है स्टूडियो का 972-501-9390। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.

0: जिंदगी के राज, हवा की लहरों से बन के आवाज, ये है प्रोग्राम चराग। पेश किया जा रहा है हर जुमा शाम 7 से 8।
1: From the studios of Inspire FM, the time is now 3 o'clock.
2: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM. This is Inspire FM News.
3: This is the national and international news today, Tuesday, 28th of July, for Inspire FM, read by Shaheen Mirza. Pakistan's Kashmir votes. The election hinges on 12 disputes.

0: heated seats. Firefighters race to control wildfires near Madrid and Bordeaux, and another heat wave hits. UN expert condemns Imran Khan's 33 months in solitary confinement. Schools to offer technical subjects from age 14 in England, Burnham says. Fourth heat wave grips parts of UK with 35 degrees Celsius forecast. Johnson & Johnson offers up to $5.5 billion to settle baby powder lawsuits. Three teenagers charged with murder after fatal Luton stabbing. And that concludes today's news roundup. Next, the Urdu News with Mukarram Abbas.
1: Inspire FM ki Urdu News ke saath, main hoon Mukarram Abbas. Sabse pehle aaj ki headlines par ek nazar. ईरान ने सालसों के जरिए किए जाने वाले मुज़ाकरात मुस्तरद कर दिए हैं। अमेरिका ने जबरी मुशक्कत की रोकथाम में नाकामी पर 60 से ज़ायद शराकत दारों पर 10 से 12.5 तजारती टैरिफ आयद कर दिया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने मैनचेस्टर में नए ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। सामीन, ये थीं इस वक्त तक की अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिए इंस्पायर FM.
2: Always up to date with everything that's happening locally, nationally, and internationally. This is Inspire FM.

0: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
1: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
2: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM Summer Tips. Let's have a productive summer break. Make it a habit to pray your voluntary sunnah prayers at home, following the Prophet's tradition to bring light, peace and blessings into your living space. Thanks for tuning in and keep listening for more only on Inspire FM.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
5: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: Assalamu alaikum. You have been listening to the Daily Imam Booster. Stay tuned to Inspire 105.1 FM for more inspiring talks and lectures.
1: आजकल आपके दरवाजे पर मुख्तलिफ चीजें फरोख्त करने के बहाने और मुख्तलिफ कंपनियों का नाम इस्तेमाल करके चोर आपके घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, इसलिए होशियार रहें और दरवाजा खोलने से पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि दस्तक देने वाले से आप और आपका घर महफूज है। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

0: It's Sportscast, the show where we dive into the latest sporting events, the hottest debates, and the legacies that make sports unforgettable.
1: Join us every Monday at 7 p.m. as we break down the action, share our takes, and go head-to-head on the big sporting questions.
0: Sportscast, your new home for sports talk. Don't miss it.
2: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
3: Last time on Akhri Mojza.
4: फिर उसमें एक मजे की बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो औलादें हैं, एक नस्ल आ रही है इस्माइल से, दूसरी आ रही है इसहाक से। इस्माइल से मुतालिक ख्वाब है ज़िबा वाला, इसहाक की नस्ल में ख्वाब है भाइयों वाला, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों नस्लों की तकमील है असल में, क्योंकि जो बनी इसराइल को दिया गया उसकी तकमील भी हमारे रसूल हैं। उनके आखिरी रसूल आए ईसा, और ईसा जाने से पहले कह गए अहमद आ रहे हैं, और इस तरफ थे इस्माइल जिनकी ज़बान से दुआ निकलवाई कि एक रसूल भेज दें। तो दोनों की तकमील और दोनों के ख्वाब मिलकर आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आकर जुड़ते हैं। आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुकस्सिरीन ला तखाफून, सूरतुल फतह के आखिर में। खैर, दैट वाज अ साइड नोट।

अच्छा, तकदीम और ताखीर, ये भी बड़ी अजीब कुरान की, कुरान के अजायब में से है तकदीम और ताखीर। मैं पहले समझाता हूँ तकदीम और ताखीर होती क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में, ठीक है, कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में। जैसे मैं कहूँ सूरज और चांद, मैंने सूरज पहले कहा, चांद बाद में कहा। अगर मैं चांद और सूरज, चांद पहले सूरज बाद में, यह है तकदीम और ताखीर। कुछ दफ़ा होती है तकदीम ताखीर अल्फाज की, अल्फाज के मामले में, कभी कभी जुमले के हिस्सों के मामले में होती है। वो उर्दू में मुझे समझाना मुश्किल होगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, इस तरतीब में आप कुछ तब्दीलियाँ भी ला सकते हो। कैसे कह सकते हो खाना मैंने खाया, मैंने खाया खाना, अब इधर अदल बदल कर सकते हो। बात तकरीबन एक ही है, या तो बिल्कुल ही एक ही है, कुछ ज़रा अजीब लगेगी, कुछ सही नॉर्मल लगेगी, लेकिन आप बात मुख्तलिफ अंदाज से उर्दू में कर सकते हो। जुमले के जो मुख्तलिफ अज्जा हैं उसको आप अदल बदल कर सकते हो, तरतीब में तब्दीली ला सकते हो। ऐसा ही है ना, अरबी में क्या है कि जब आप तब्दीली लाते हो ना तरतीब के अंदर, तो उसमें मायने में फ़र्क पड़ जाता है, मायने में फ़र्क आ जाता है। तो उसकी अब कुछ मिसालें हम देखेंगे कि तरतीब एक तो है नॉर्मल तरतीब, जैसी होनी चाहिए, जैसी तवक्को है, उससे हटाकर अगर करोगे ना तो उसमें ख़ास मायने का इजाफा हो जाता है। तो उसकी एक मिसाल है इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन, वो आसानी से हम शुरू कर रहे हैं, असल में है नअबुदु का व नस्तईनु का। तो वो जो का है उसको पहले ले आए, पहले ले आए तो वो अकेले से खड़ा हो नहीं सकता, उसके लिए इया लगाना पड़ता है। इया का असल में कोई मायना नहीं है, लेकिन का मसला ये है कि वो कुर्सी के बगैर रह नहीं सकता, उसके किसी ना किसी पे टेक लगा के खड़ा होना होता है। तो उसके लिए अरबी में क्या चीज़ की इजाद है, इया। तो इया का तर्जुमा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक कुर्सी है का के लिए, इया का नअबुदु व इया का नस्तईन। असल में ये नहीं था, असल में आम उसलूब क्या है अरबी का, नअबुदु का व नस्तईनु का। तो पहले लाने से क्या हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इबादत करते हैं, इसमें सिर्फ का इजाफा हो गया, सिर्फ और सिर्फ तेरी मदद मांगते हैं। अब इस बात को याद रखना, अगली मिसाल देखते हैं, बलिल्लाहा फाबुद, यहां पर असल में था फाबुदिल्लाहा, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, वकुम मिन शाकिरीन, और शुक्र गुजारों में से होना। लेकिन यहां पर अल्लाह का लफ्ज पहले ले आए, अल्लाह का लफ्ज पहले ले आए। अगर पहले ले आओ तवक्को से, तो क्या मायने में क्या इजाफा होता है, सिर्फ का इजाफा। और भी होते हैं, लेकिन इन मिसालों में सिर्फ का इजाफा है, यानी इबादत करना सिर्फ अल्लाह की। अगर कहूँ ना फ़अबुदिल्लाह, अल्लाह की इबादत करना, अगर कहूँ फल्ला बलिल्लाह फ़अबुद, बस फिर सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। अच्छा, दूसरा जुमला क्या है, वकुम मिन शाकिरीन, मैंने क्या कहा, शुक्र।